0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

दुख सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड़ा न होवै घाट न जाए। ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोय, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा। बिनौ करो गुर पास, हम कीरे किरम सत गुर सरणाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव। मोकौ राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहिरी मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाई। ताका रिजक आगै कर धरिया, मेरे माधव जी। सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कास्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भउ करिया। ऊडे ऊडे आवै सै कूसा, तिस पाछै बचरी शरिया।

अनेक प्रह बह सिमरित सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिस नौ कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ै पई ले निवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अली मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा पई परापत मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरै कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहै प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहौ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझै उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करियो रक्षा। राख लेहो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जीते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही

नानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जीरज से तज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा होय ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जाने ओ।

है। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहौ, जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनहो संतहो, शबद धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शबद तित कर सभागै, कर सभागै शबद वाजे कला, जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया।

0: भगत वत्सल सत गुर
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
3: ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरते अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहा है जन्म दर जन्म, एक खोज रहा है लभ रहा है तलाश कर रहा है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहिंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चे, और तृप्ति तो बिना इसनु होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा है, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहिंदे ने। ए राजा होना चाहिदा है, ए राजा बनना चाहिदा है, ए महाराजा बनना चाहिदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे अज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कढ़ रहे है, धन कढ़ रहे है, और लंबे समय तो इसकी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनु राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होने का दावा कर दे रहे, महाराजा होने का ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे वो राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियों नु कहा सी, कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढ़ने, ताकि जगत नु पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौटदे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। ए गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहे ने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभया, लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया, और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनु सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भड़े, इसने अपना तन सोने दे गहनियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते, और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त, इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कमां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया, धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नू रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़िया और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया। बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया और मिल रहा है, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये त्रिपत नहीं हो सकया। फिर भी ये अपने आप नू कहिंदा ते रहा, मैं राजा मैं महाराजा, पर नहीं, तीन हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। इतना वड्डा सागर भी मनुख नू राजा नहीं बना सकया। निगाहां आसमान ते चलिया गईयां, चंद्रमा ते और ग्रह नक्षत्रां ते, शायद इत्थों कुछ लभे और मेरी झोली भरे। लेकिन चंद्रमा तो भी मनुख मुट्ठी भर रेत लेके ही वापस आया है, झोली खाली है। निगाहां और अगां तो अगां जा रही ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ए बंदे जे तेनू धरती तृप्त नहीं कर सकी, तेनू पहाड़ नहीं रजा सके, तेरी प्यास सागर नहीं बुझा सके, और ग्रह नक्षत्र भी तेनू महाराजा नहीं बना सके, तो कम से कम तू इस अनुभव तो लाभ उठा। बार जितनी भी खोज करेगा तेरी लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, तू राजा नहीं हो सकेगा, महाराजा नहीं हो सकेगा। फिर किथे खोज करिए? तो सतगुरु दी वाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। भगत कबीर भी फरमान करदे ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है। ए बंदे जमीन ते तू खोजी, पहाड़ सागर आसमान ते तू खोजे है, पर हुण अपने दिल दी खोज कर, अपने मन दिच जाती मार। पहाड़ां दी खोज लई बार मुखी होना पैंदा है, धरती दा सीना चीरन लई बार मुखी होना पैंदा है, सागर दी कुख दे चों मोती कढ़न लई बार मुखी होना पैंदा है। पर अपने ही जीवन दे मन दे अंदर जात मार के रब्बी खजाना कढ़ना, इहदे लई अंतरमुखी होना पैंदा है। ध्यान नू अंतरमुखी करना है, जो बार जा रहा सी उनू अंदर लेना है। बंदे खोज देर हर रोज, ना फिर परेशानी मां है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। मन एक बहुत वड्डा महल है, मन एक बहुत वड्डी भूमि है, और मन एक बहुत वड्डा पहाड़ है, मन एक बहुत वड्डा सागर है। शायद इसे वास्ते भगत पीपा जी कहंदे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जो तू ब्रह्मंड दे खोजदा रहे हैं, इस तरह दी खोज अपने अंदर भी कर सकदा है। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्मंड दी खोज कर करके पदार्थ तेरे हाथ लगे ने, पर जे तू पिंड दी खोज कीती तो परमात्मा तेरे हाथ लगेगा। सागर दे चों तेनू मोती मिले ने, पर मन दे सागर दे चों तेनू ज्ञान मिलेगा। पहाड़ां दे चों तेनू धातुआं मिलियां ने, पर दिल दी खोज करदियां करदियां तेनू शांति सकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जमीन दे चों तेनू अन्न मिलिया, धन मिलिया, पर मन दे चों तेनू तृप्ति मिलेगी, रजेवा मिलेगा, तू राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। चंद्रमा तो तू मुट्ठी भर रेत ले आया है, पर जे थोड़ा जिया अंदर जाती मार मन दे चंद्रमा दे चों तेनों ओ अदुती खजाने लबन गे कि तू अनंत काल तक माला माल हो जाएगा, सदीवी माला माल, सदीवी चढ़दी कला, सदीवी आनंद। बंदे खोज दिल हर रोज, ये खोज रोज रोज करनी पड़ेगी और उतने चिर तक करनी पड़ेगी जितने चिर तक ये खजाना हथे नहीं आउंदा, ये दौलत हथ नहीं आउंदी। कोई थोड़ा जिया अंतर्मुखी होंदा है तो कविता गीत संगीत उसदे पल्ले पै जांदा है। जो कवि है ये थोड़ा जिया अंतर्मुखी होया है, मन दे एक निक्के जिया कोने दे थोड़ा जिया इसने प्रवेश कीता है, एक कवि बन गया। मन दे दूसरे कोने दे किसी ने थोड़ा जिया प्रवेश कीता है, एक संगीतकार बन गया, दार्शनिक हो गया, फिलोसफर हो गया, चिंतक हो गया। पर मन इतना महान है और इस दे अंदर जिना जिना ने भी जात मारी है उते कहंदे ने कि मन दा पारावार नहीं, अथा दैवी गुणा नाल ए भरे होया है। कहंदे ने पश्चिम दे मनोविज्ञानक ए आखदे ने कि भारती ऋषि मुनि गलत कहंदे ने कि मन विच राम है, कतई नहीं, मन विच काम है। भारती ऋषि मुनि जो ये कहंदे ने मन विच अथा खजाने ने, वो कहंदे नहीं, मन विच सिवाय कंगालता तो साडे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। दरअसल पश्चिम ते पूरब दा जड़ा मनोविज्ञान है उदे आधार अलग अलग ने। पागल बंदिया नू आधार बना के पश्चिम दा मनोविज्ञान खोज करदा रहा कि पागल क्यों हो जांदे ने, पागला नू आधार बना के ए पागल क्यों हो जांदे ने इस दी खोज ओ मन विचों करदे रहे। पर कोई आनंदित हो गया है, समाधि लीन हो गया है, परम प्रसन्न हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है, ये परम आनंदित क्यों हो गया है, ये परम सुख चैन दी दौलत नाल माला माल किस तरह हो गया है। इस तरह दे तंदुरुस्त बंदे नूं आधार बना के भारत दे ऋषि मुनि मन दी खोज कर दे रहे ने। तो एक ने तंदुरुस्त नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, एक ने बीमार नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, तो फिर खोज दे जमीन आसमान दा अंतरा ते होना सी, वो होया। पश्चिम दा मनोचिंतक कहिंदा है मन विच वासना है, मन विच अहंकार है, मन विच लोभ है। जितना गहरे जांदे हां इस तो बिना होर मन विच कुछ भी नहीं है, लोभ ही लोभ है, अहंकार ही अहंकार है और मन काम नाल ही भरे हुए है। आम दृष्टिकोण नाल जे ऐसा देखिए ते कुछ सच्चाई भी प्रतीत आउंदी है कि थोड़ा जिया मन विच जात मारी है ते अंदर काम है, ते अंदर लोभ है, ते अंदर अहंकार, यही फुरने पे चलदे ने। पर ए उपर उपर ने, तह विच नहीं, सता विच नहीं, लहरां भी सागर दे उपर उपर ने, तह विच नहीं, गहराइयां विच नहीं। सारी भज दौड़ भी सागर दे उपर उपर है, थल्ले ते सुकून है, शांति है, ठहराव है, एकाग्रता है। सागर दी उछली हुई अवस्था नू ही तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नू ही काम कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नू ही लोभ कहंदे ने और मन दी उछली हुई अवस्था नू ही अहंकार कहंदे ने। भगत नामदेव जी महाराज साफ कह रहे ने, लोभ लहर अत नीछर बाजे काया डूबे केसव। हे केसव हे प्रभु, बड़िया लोभ दिया छल्ला ने, बड़िया लोभ दिया उचिया उचिया लहरा ने, मैं ते डूब रहा, तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, मैनू बचा। तो सागर दी उछली हुई अवस्था नू तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था ही लोभ है, मन दी उछली हुई अवस्था ही अहंकार है, ते काम है। ऊपर ऊपर कोई देखेगा, इस उछली अवस्था नू देखेगा तो सिवाय काम, सिवाय लोभ ते सिवाय अहंकार तो और कुछ प्राप्त नहीं होना। तो पश्चिम दा मनोचिंतक एक कहिंदा रहा कि मन दी ते सिवाय काम तो और कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार तो और कुछ नहीं। पागल बंदियां नू आधार बना के मन दी खोज कीती जांदी रही है, पागल क्यों हो जांदे ने, तवाजन डावा डोल क्यों हो जांदा है, ये अपना संतुलन क्यों खो बैठते ने। अक्सर काम दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, लोभ दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, और अहंकार दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, ते असीम क्रोध संतुलन खो देंदा है, असीम क्रोध तवाजन डावा डोल कर देंदा है, मनुख नु पागल बना देंदा है। हां, जिस तो किधरे काम दी पूर्ति होवे, लोभ दी पूर्ति होवे, अहंकार दी पूर्ति होवे, वो प्यारा लगन लग पैंदा है, उसते मोह आ जांदा है। पर कोई भी हमेशा दी पूर्ति नहीं कर सकता, ये पूर्ति वक्ती आउंदी है, आरजी आउंदी है। इस वास्ते मोह छिन बंगर हो जांदा है, प्रेम टूट जांदा है, रिश्तियां दे च रोज दराड़ां आउंदियां दिखाई देंदियां ने, मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकता, हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं कीती जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नु शांत नहीं कर सकता। तो जिथे इनकार, जिथे अतृप्ति, उथे क्रोध, यही असीम क्रोध अगां चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नू आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज कर दे रहे, ते ऐलानिया उन्होंने कह दिता, मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है, तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहने, मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखदे हां सी सिपियां संख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पए ने, ऊपर नहीं मोती मिलते, किनारे ते नहीं मोती मिलते। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे च है। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब केंद ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोजदिया उसनु नौ खजानिया दी प्राप्ति हो जाएगी, नौ दा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋਰਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤੋ ਵਜ਼ਾਉ ਕੇ ਕਜ ਕੁਲਾਹੀ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਜਦ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਹਰੋਂ ਇਤਨੀ ਜੁਟਾ ਲਵੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਗਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਸਦੇ ਘਰ ਦੌਲਤ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੋਵਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਇਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਨੇ ਤੇ ਰਤਨ ਹੋਵਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਉਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀੜੀ ਦੀ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਜਤਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਤੇ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਸ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਈਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਸਫਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਿਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਕਦਮ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਚੈਨ ਛੋੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਛੋੜਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਸਰਨਗੇ, ਮਹਾਨ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਜ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਉਸਾਰੂ ਬੋਲ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਆਮ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਬੋਲ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਪ। ਤੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਹਾਨ ਬਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਭਜ ਦੌੜ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਸ ਨੇਚਲ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਸਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਝਲਕ ਲੋਭ ਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੈਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਬੂਲ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਸਕੇਗਾ, ਆਖਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਥੱਕੇਗਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਵਹਿਣ ਤੇ ਦਾਉ ਗਉ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदिया करदिया गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होएगा, खोजदिया खोजदिया मन तो पार होए तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया।
4: सतयुग तय माणियों

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उगर सैन खोराज अभय भगतें जन दियो।

तो समझान लगे आ कुदरती गल है इस दे अहंकार नु पहले मिटाना सी, इस दे अहंकार नु पहले दूर करना सी। इसे ही कलयुग देच महात्मा बुद्ध ने भी देखिया, सियाणा मनुख जरूर हो गया है, अहंकारी है, तो उसने बनाए भिक्षु, भिखारी भिक्षु। दरअसल जद भिक्षा ही लेनी है तो मान तान वाली ते कोई गल है नहीं, हंकार दी कोई गल ते हो ही ना। आखिर एक भिक्षु एक मांगत किस चीज दा अहंकार कर सकता है, उदे कोल की हंकार रहेगा। मनुख दे हंकार नु मिटाण दी खातर भिक्षु महात्मा बुद्ध ने बनाए, पर यह सर्वव्यापी धर्म नहीं सी। अगर सारे भिक्षु बन जान सारे पृथ्वी दे लोग, तो फिर देण वाला कौन होवेगा, सारे मंगण वाले ने इन्हां कौन देगा, कौन इन्हां दी झोली दे रसद पानी पाएगा, कौन इन्हां नूं भोजन खिलाएगा, कौन इन्हां नूं वस्त्र देवेगा। अगर सारे भिक्षु बन गए तो भिक्षु होना महात्मा बुद्ध दी ये देशना कुछ एक लोगां लई सी, सारियां लाल लई सी, सारियां लई ए लाभकारी नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने लंबी निगाह नाल देखिया कि सारे लाभ उठा सकन, कुछ खास चुनिंदा बंदे ही क्यों। जैसे एक कॉलेज होवे किसे शहर देच, तो फिर ढंडोरा पिट दिता जाए, कुछ घरां दे बच्चे इस देच पढ़ सकदे न, बाकी नहीं, बाकियां लई दरवाजे बंद। इत बहुत वड्डी बेइंसाफी होवेगी। तो बौद्ध धर्म सारियां लई नहीं सी। अगर सारे ही भिक्षु बन जान तो फिर कौन उन्हां दी झोली भरे, कौन भिक्षा देवे। और सारे ग्रस्त दा त्याग कर देन तो धरती ते चंद सदियां तो बाद सुन्नी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, मनुखता ही मिट जाएगी, मनुखता ही खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक दी दृष्टि दे समूह ब्रह्मंड सी, सारे ब्रह्मंड दे लोकी सन। तो आपने शब्द दिता सिख, बड़ा निर्माण शब्द, बड़ी जिस दे गरीबी है, बड़ी विनम्रता है। सिख, मैं सिखना है, मैं सिखण नू तैयार हां, मैं सिखना चाहना और मैं कुछ नहीं जानना। इस तरह दे सारे जज्बात कठे होवन, इस तरह दियां भावनावां कठियां होन, ते कोई बनदा है सिख। जो आखे मैं बहुत कुछ जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा, हंकारी होवेगा, सिख नहीं है। इस वास्ते सिख हंकारी नहीं हो सकदा और हंकारी सिख नहीं हो सकदा। इन्हां दोहां दा आपस दे संबंध नहीं है। गुरु नानक ने मनुख दे मूल रोग नु समझिया, हाँ मैं हाँ मैं ही हाँ और कोई नहीं। इस सदी दा मूल रोग, हाँ मैं रोग, मानुख को दीना काम रोग, मैं गल बस कीना। मनुख दे कोल जड़ा बुनियादी रोग है अहंग हंकार। ये धार्मिक साधना करदिया भी खड़ा रहिंदा है, ये दान पुन दे राही भी प्रगट हो जांदा है, ये होर तरह तरह दियां साधना करदिया होया भी गुणा दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, औगुणा दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, मिटदा ही नहीं अहंकार। अहंकार नू मिटाण दी इक्को ही औषधि गुरु नानक ने लभी, भी प्रथम तो ए कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। आखिर अहंकार ते इत्थे ही टिकदा है कि मैं बहुत कुछ जानना, मैनू बहुत कुछ पता है। ते जद आखे कोई मैनू कुछ भी नहीं आउंदा और मैं कुछ भी नहीं जानदा, कम से कम सच बारे, जीवन बारे, परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे ते सारे आधार ही टुट गए। अहंकार जिना जिना कुर्सियां ते बैठदा सी उते कुर्सियां ही सारियां टुट गईयां। उते जानकारी दी कुर्सियां ते बैठदा सी, मैं सब कुछ जानदा, मैनू हर पक्ष दी समझ है, मैनू सब कुछ पता है। सिख, मैनू कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानदा, और जीवन दे किसे पहलू दी मैनू कोई सूझ नहीं, मैनू कोई समझ नहीं, ना जिंदगी दी ना जिंदगी नू देण वाले दी।

0: दुखी भी रहेगा, संताप ग्रस्त भी रहेगा, वक्ती तौर पर आनंद रस भी बनता रहेगा, लेकिन कुरलांदा भी रहेगा। क्योंकि जितने चिर तक मंजिल की प्राप्ति नहीं आती, मंजिल की है मनुख का परमात्मा होना, मनुख हुक्मरान हो गया, धनवान हो गया, छोटी का साइंटिस्ट हो गया, बड़े तो बड़ा पंडित हो गया, विद्वान हो गया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है मनुख का भगवान होना। समस्त वरेज खुदा के अगों प्रार्थना करते हैं, मन तो सोदी तो मन सोदम, मन जान सोदी तो तन सोदम, ई कसना गोयद बाद रें, मन दी गरम तो दी गरी। बड़ा एक महान फकीर होया ईरान विच, कहिंदा खुदा तू मैं हो जावे, मैं तू हो जावा, मैं तन हो जावा, तू जान हो जावे। फिर कोई ए ना आखे खुदा कोई हो रहे ते शब्द तबरेज कोई हो, ई कस ना गोए दबाद अजी, मन दी गरम तो दी गरी। तू कुछ हो रहे मैं कोई हो रहा, ऐसा कोई ना आखे, इस तरह आपा हो जाइए। वो ते मंग पिया करता है, मैं तन हो जावा तू जान हो जावे, मैं तू हो जावा तू मैं हो जावे। फिर कोई ये ना आखे कि असी अलग अलग हाँ, दीगर रविदास कहने ना अपन तो एक हो गए, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। सच्ची तृप्ति उस दिन मिलती है मनुख नूं जद मनुख परमात्मा हो जाता है। जैसे परमात्मा दे जन्मना ते मरना नहीं है, ऐसे मनुख के अंदर जीवन की लालसा खत्म हो जाती है, मरण का भय भी खत्म हो जाता। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रित पाले लेखे सास जरास। जीवन की आस उतने चिर तक बनी रहती है जितने चिर तक इस जीवन तो कोई उच्चा जीवन ना मिले। मरण का भय भी उतने चिर तक बनिया रहता है जितने चिर तक इस जिंदगी तो कोई उच्ची जिंदगी नहीं मिलती। मौत का भय है, इस गल का सबूत है, अजे इसनों जीवन प्राप्त नहीं होता। जीवन की लालसा इस गल का सबूत है, अजे उसनों जीवन मिलिया ही नहीं जिन्हों परम जीवन कहते। जिंदगी लोभ दे बतीत हो रही है, पै दे बतीत हो रही है। और मैं अर्ज करा मनुख किधरे झुकदा भी है या ते लोभ करके झुकदा या पै करके झुकदा है। लोभ करके झुकदा इस तो कुछ मिल सकता है, बह करके झुकदा इस वास्ते झुकदा कुछ खो सकता है, खोवे ना तो झुक जाइए, सजदा पिया करदा खोवे ना, या तो डर का मारा झुकदा या लोभ का मारा जो है झुकदा। झुकन दे ए दो ही कारण होंदे ने, इस जीवन तो जब उच्चा जीवन मिल जाता है जीवन की लालसा नहीं रह जाती, मरण का भय नहीं रहे। लोभ ते भय दोवें समाप्त होंदिया ही मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है। ये चार तरह के संबंध ने, किस तरह के संबंध में असी जी रहे हैं। शेख सादी साहब कहते हैं तू खुद ब मुनसब शुद्ध, अपना मुनसब आप बन, अपना फैसला आप कर। तू पशुआं वाले संबंध जोड़े ने, मनुखां वाले जोड़े ने, देवत्या वाले जोड़े ने कि रब वाले जोड़े। तू किस तल पर जी रहे, पशु के तल पर जी रहे हैं, मानव के तल पर जी रहे हैं, देवते के तल पर, फरिश्ते के तल पर जी रहे हैं कि प्रभु के तल पर जी रहे हैं। ये फैसला दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा साढ़े मन के चात नहीं मार सकता। तू खुद ब मुनसब शब्द, अपना मुनसब आप बन। जितने चिर तक मनुख को रब वाला जीवन प्राप्त नहीं होया, ये जमदा भी रहेगा, मरदा भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, संतापग्रस्त भी रहेगा। मौज का सागर हो जाना तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये बूंद का भविष्य है सागर हो जाना, ये किरण का भविष्य है सूरज हो जाना, ये मनुख का भविष्य है परमात्मा हो जाना। मन तो सो दे तो मन सो, मन जान सो दे तो तन सो दम ई कसना गोए दबाज दे मन दे गरम तो दे गरी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेहरामत करन बख्शिश करन इस तरह की प्यास इस तरह की तड़प अंदर पैदा होवे कि परमात्मा होना है। कबीर ते कहन मैं हो गया बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई साच भयो अन कते ना जाए। मैं ते सच हो गया हूँ सच ते परमात्मा है। कबीर कहने आप सच हो गए हूँ मिथ्या नहीं रहे हूँ मिट नहीं सकते आप सच हो गए सच का रूप हो गया। इस वास्ते कबीर ते ऐलानिया कहते ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। सतगुर रहमत करन ये सुभाग इसे जीवन दे सानू प्राप्त होवे ताकि बार बार जन्म मरण तो छुटकारा मिले। कितनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी कल दी हाजिरी भर के आप तो फिर छुट्टियां लवेंगे। अगला प्रोग्राम दासां दा दो दिन का झांसी एक दिन का ग्वालियर है एक दिन का इटावा है ते दो दिन कलकत्ते तो बाद फिर सारा टूर पंजाब का है। धन गुरु अंगद देव जी महाराज के संबंध में प्रोग्राम चलने ने नामवर जथे बैठे हुए ने बड़े सोहने सोहने विचारक बैठे हुए ने बड़े चरणों च बेनती है सारियां नूं सरवण करके जो है जायो और सारे खिड़े हुए फुल ने अपनी अपनी महक लेके आए ने जरूर बैठ के इन्हां नूं सरवण करना कोई बहुत ज्यादा समा नहीं होया। सारियां दा बार बार धन्यवाद बुल चुकदी जावां।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: और दसवें पातशाह का हुक्म है कि अगे आवत सिंह जो पावे वाहेगुरु जी की फतेह बुलावे। फतेह बुलाउण नाल दो बार वाहेगुरु गुरमंत्र का सिमरन हुंदा है। और साध संगत जिहड़ी रसना नाल आपां वाहेगुरु कहिंदे आ, वाहेगुरु कहण नाल रसना पवित्र हुंदी है। ये बेनती मैं थोड़े दिन पहला दरबार साहब तो भी कही, पानी नाल हाथ धोवोंगे हाथ सुचे हो जाते ने, पानी नाल पैर धोवोंगे पैर सुचे हो जाते ने। किसी ने प्रशाद वरतौना होवे उन्हूं कही दे भाई हाथ धो के कोई सेवादार आओ प्रशाद वरतौना। अच्छा, वो हाथ धो के आउंदे ने, कड़ा प्रशाद वरतौण लग्या हाथ नाल प्रशाद लैके एक नूं दित्ता, दो नूं, तिन्नां नूं, चौं नूं, दसां नूं, वीहां नूं, पंजावां नूं। वार वार कड़ा प्रशाद हाथ नाल चुक के वरतौंदे ने, कदे किसी ने कहा नहीं वी तेरे हाथ जूठे हो गए, क्योंकि उन्हें हाथ धो के प्रशाद वरताया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया बहण है, कोई पैर धो के आंदे उन्हूं महाराज जी की ताबिया बिठाई दे, भाई तू पैर धोते ने पैर सुचे हो गए। पर साध संगत आ जीभ जिहदे नाल आपां बोल रहे हाँ, ये जीभा किस तरह का इंदरा है जिहड़ा किसी भी कीमत ते सुचा नहीं हुंदा। जे कोई बंदा कहे ना कि मैं तो ब्रश किया होया जी, मैं बाहरों पानी का कुरला करके आया, मेरी जीभा हुण सुची हो गई है, पर जीव जिहड़ी चीज़ नाल तुसीं लाओगे वह पदार्थ जूठा हो जाता, क्योंकि जीव सुची नहीं है। हाथ धो के किसी चीज़ नूं लाउंदे हो हाथ सुचे ने, वह वस्तु जूठी नहीं होएगी, पर जीव तुसीं बाहर पानी का कुरला करके आ जाओ ब्रश करके आओ, फिर बंदा कहे जी मेरी जीव सुची है, जिहड़ी चीज़ नूं जीव लाओगे वह पदार्थ जूठा हो जाता। इहदा मतलब जीभा जिहड़ी है वह सुची नहीं हो सकती। पर पातशाह की बाणी ने कहा भाई जीभ भी सुची हो जाती है, रसना भी सुची हो जाती है। महाराज कहदे नाल कहिंदे नाम जपत गोबिंद का सुची पई रसना। भाई ये सुची पई रसना कहदे नाल, नाम जपत गोबिंद का। जे कोई रसना नाल जपे सतनाम श्री वाहिगुरु ओदी रसना सुची हो जाती। इसलिए दो बार वाहिगुरु गुरमंत्र आउंदा वाहिगुरु दे विच जदों आपां फतेह गजाउंदे, भाई ये रसना भी पवित्र हो जाती है। बाहरों हाथ पैर धो के अपन गुरु दरबार में आए हाँ, हुण रसना पवित्र करने लिए कहना पैंदा, एक बार फिर रसना पवित्र करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु कहिंदिया मुख पवित्र हो जाए, वाहिगुरु कहिंदिया श्वासां दा भला। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जिया का आपां पुरब मना रहे हैं शहीदी दिहाड़ा। मैं धन गुरु तेग बहादुर महाराज जिया का एक सलोक लैके कथा आरंभ करनी है, ध्यान नाल सुने। दुनिया में जिन्ने भी मनुख ने हर बंदे नूं अपनी समझ उत्ते अकल उत्ते बड़ा माण है। जिन्हों मर्जी पुछ लो कहिंदा मैनू सारा कोई पता है, मैनू बहुत अकल है। जिहड़े बच्चों मां प्यो उंगली पकड़ के तुरना सिखाते ने, मां गोदी विच बिठा के बोलना सिखाती है, उही बच्चा जदों 15-18 साल का हो जाता है वह मां प्यो नूं कहण लग जाता तुहानूं नहीं पता मैनू पता है सब। जदों अकल का दौर शुरू हुंदा है हर बंदा कहिंदा मैनू अकल है, हर बंदा कहिंदा मैनू सब कुछ पता है। पर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बचन कहा भाई किन्ना भी कोई बुद्धि जीव होवे, कोई ज्ञानी होवे, कोई ध्यानी होवे, कोई किन्ना पढ़िया लिखिया होवे, बंदा जो अपनी अकल नाल चाहुंदा ये याद रखियो वो कुछ हुंदा नहीं, बंदा कुछ होर सोचदा रब कुछ होर कर दिंदा। इहदा मतलब बंदे की सोच परफेक्ट नहीं है कि जो मैं सोचा उही होना, जो मैं विचारिया उही होएगा, नहीं। बंदे की मर्जी हर काम विच नहीं चलेगी, कुछ कुछ जिंदगी विच गल्लां ने जिहड़ियां पूरियां हो जाणगियां, अदरवाइज ये सच है। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਓ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਓ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਹਿ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਸ਼ੇ ਆਰੈ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਸ਼ ਆਰੈ, ਪੜ੍ਹੋ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਸ਼। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਦਾ, ਚਾਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਹੋਰ, ਔਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹੋ, ਨਰ

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋਤ ਸਰਸਨਾ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰ ਨਿਭਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪਾਪੋ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਕਿਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਨਿਹਾ ਉਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੱਖੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸ ਕਰ ਚਲਹੈ
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹਿ
0: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਜੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਜਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਜੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਭੂ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਰ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਬੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ
0: ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यों बसदा को खुदे को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ
0: नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी के होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबर जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी अपनकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम सर्व में भिख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न भिख नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू की निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विख्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विसन की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हो वैने कर्म
0: इस वैष्णव का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बांचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानको वैष्णव परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोय
1: कर कृपा अंतर उरता रहे
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: ज्ञान रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितने न पाई है धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर है
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत है नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिक काटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताये साई जुगत
0: नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ
0: जित जित कर रखे तैसा तन नाम
1: आपे कर्ण करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरे आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्या वहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने को,
1: कई कोट पर दर्भ को हिरे,
0: कई कोट पर दुख न करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: यत यत लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पात्र वृक्ष न बुझाए,
1: कई कोट पवन पानी में संतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर शतर,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस ताम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सो कर्म रिकाच,
1: साते नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिपतरे आप प्रभुर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहु जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखी,
0: नानक सब किश प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भय बैरागी,
0: राम नाम सख तन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोजंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रभ्यास,
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश,
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अर खंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जगत की नविस्तार,
1: कई बार बसरे उपासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: हो वत्यातम प्रकाश,
1: कई कोट तत्व के बेते,
0: सदा नहारे एको नेत्रे,
1: कई कोट नाम रस पीवे है,
0: अमर पहे सर सर ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गावे है,
0: आत्म रसुक सह समावे,
1: अपने जन को साथ साथ संभारी,
0: नानक को हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: करण करावन करने जोग,
0: ज्योत स्वभाव है सोई होग,
1: फिर मैं था उताप नहारा,
0: अंत नहीं किस बारा वारा,
1: हुक्मे धार अतार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
0: नानक सब में रहा समाई,
1: प्रभ भावे मानो गत पावे,
0: प्रभ भावे ता पात्र त्रावे,
1: प्रभ भावे बिन शास्त्र रखे,
0: प्रभ भावे ता हर गुण पाखे,
1: प्रभ भावे ता पत उधार है,
0: आप करे अपन विचार है,
1: दोहा श्रिया का आप स्वामी,
0: खेले से अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि और न आवे,
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योत स्वभावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योत स्वभावे सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूला दह दिसतावे,
0: नमक माहे चार कुंड फिर आवे,
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे,
0: नानक तेजन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
0: बार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दह दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे
1: जियो पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीवे देख बढ़ाई,
1: इसका बल ना ही इस हाथ,
0: कर्ण करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
0: ज्योत स्वभाव है सोई फन थी,
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बसे,
0: अब हूँ शोक हर करंग हसे,
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: अब हूँ उब काश प्याल,
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: अब हूँ नृत्य करे बहु भांत,
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: अब हूँ महा क्रोध विकराल,
0: अब हूँ सर्व की होतर वाल,
1: अब हूँ होए बह बड़ राजा,
0: कभू भिखारी नीच का साजा,
1: कभू आप कीर्त में आवे,
0: कभू भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभ राखे ते भी रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कभू होए पंडित करे बख्यान,
0: कभू मोहन तारी लावे ध्यान,
1: कभू तट तीर्थ स्नान,
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कभू कीट हस्त पतंग होए दिया,
0: अनक जोन पर में परमिया,
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे,
0: जो प्रभ भावे तवे न जावे,
1: जो भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कभू साध संगति पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसै पर ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जल में जल आए कटाना,
0: ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गवन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाति होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत बिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का हुए विनाश
1: सत्य आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों धारी
0: शरम पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे कवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्प की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रम सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: सब ते दूर सब हो कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पया ने
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: कोसते भिन्न कहो किस होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन हार जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत हो हे मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भी तरह
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक कन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी हर बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान प्रमाइये
0: संत का दुखी उजड़ पाइये
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजिया पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रख न हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यों जल बे हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बवार तेरे खेत माहे दहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
1: कीर्तन दिक्का तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख ना त्रिष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास ग्रास
1: सब कछ वर्त तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेल अब करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनों कृपा करे तिस अपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ,
0: ਜੀਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ,
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ,
0: ਮੋਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ,
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ,
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਸਨਾ ਹੀ ਹਾਥ,
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖ ਹੋਏ,
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ,
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ,
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ,
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ,
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ,
1: ਮੈਨੂੰ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ,
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ,
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ,
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ,
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ,
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ,
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ,
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ,
0: ਸੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ,
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ,
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ,
0: ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ,
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ,
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ,
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ,
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ,
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ,
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ,
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ,
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ,
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ,
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ,
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ,
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ,
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ,
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ,
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ,
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ,
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ,
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਕਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ,
1: ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ ਮਰੈ,
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ,
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ,
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ,
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ,
0: ਅਨਕ ਜੁਗ ਤਰਚ ਥਾ ਬਿਥਾ,
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਖੰਡ,
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ,
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ,
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ,
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ,
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ,
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ,
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ,
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ,
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ,
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ,
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ,
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ,
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ,
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ,
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ,
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ,
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਈ,
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे व्रता कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अपन की या कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: बत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: रब की जोट सगल कट सो है
1: धनवंता होए क्या को घर पै
0: जा सब कुछ तिसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: जे को होए वह दातार
0: इस देन हार जाने गा वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थामे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तरह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिर लाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सह चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से थी कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुखो जलहर दर कह सोए
1: एहो वापार बिरला वापार है
0: नानक ताकै सतबर हार है
1: तेन साध के धोई धोई पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध उपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बेगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमृत रस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ देव ते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रैणी
0: शक्ति उज निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन को की प्रतीत
0: जिन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिया तेह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट सचा आकार
0: सच वर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
0: सब बुझाए नानका जिस होए सो परसन अष्टपदी
1: अवनासी प्रभ मन मह राख
0: मानु की तू प्रीत त्याग
1: इससे परे नाही किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाओ
0: नानक कै मन ए नराओ
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिया करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: अपमत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याई त्याई भक्ता सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाए
0: जन्म रेफरे आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे थिन माही
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत के वर प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नाम गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जल जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की या सब सत
0: आपे जाने अपने मृत गत
1: जिसकी सिरठ सो करना हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक जोत सुभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: करके रंग राज जन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटना हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसन्न हार
0: पूजा सत सत ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ,
1: ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤਿ ਕਨਹਾਰ,
0: ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਨ ਹਾਰ,
1: ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਧਾਰੀ,
0: ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ,
1: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ,
0: ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ,
1: ਬੁਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ,
0: ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
1: ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦਾ ਜਨ ਮਾਨਿਆ,
0: ਨਾਨਕ ਰਾਵਣ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ,
1: ਜਾਂ ਕਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ,
0: ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ,
1: ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ,
0: ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ,
1: ਬਸ ਮਾਹੀ ਲੈ ਬਸ ਗਡਾਈ,
0: ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ,
1: ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ,
0: ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ,
1: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ,
0: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,
1: ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ,
0: ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ,
1: ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ,
0: ਆਪਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ,
1: ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ,
0: ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ,
1: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰੈ,
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਕੈ,
0: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ,
1: ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇਵ ਡਾਈ,
0: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ,
1: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੈ,
0: ਤਾਕੀ ਕਦਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਖੈ,
1: ਆਪਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕੋਊ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ,
0: ਆਪਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ,
1: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ,
1: ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਰ ਰਾਖੈ,
0: ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ,
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨ ਕਾਢ ਤੇ ਆਪ,
0: ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ,
1: ਮਾਨਸ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
0: ਜਿਸ ਕੇ ਕਰਤਵ ਬ੍ਰਥੇ ਜਾਤ,
1: ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਹਵਰ ਨਾ ਕੋਈ,
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ,
1: ਕਾਹੀ ਸੋਚ ਕਰ ਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ,
0: ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲਖ ਵਡਾਣੀ,
1: ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ,
0: ਕੀ ਅਮਰਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀ ਹੈ,
1: ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ,
0: ਜਿਸ ਕੇ ਸ਼ੇਵਰ ਨਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ,
1: ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ,
0: ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ,
1: ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ,
0: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ,
1: ਊਰਤ ਬੈਠ ਸੋਭਤ ਨਾਮ,
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ,
1: ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ,
0: ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ,
1: ਕਰੇ ਭਗਤੇ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਈ,
0: ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ,
1: ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ,
0: ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ,
1: ਇਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ,
0: ਇਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਣੋ,
1: ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਅਸੇ ਹਜੂਰੇ,
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ,
1: ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹ,
0: ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ,
1: ਜਿਨ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ,
0: ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ,
1: ਕਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ,
0: ਇਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ,
1: ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਟ,
0: ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ,
1: ਆਪ ਨ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ,
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ,
1: ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ,
0: ਜਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖੀ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ,
0: ਸੇਵਕ ਔਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ,
1: ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ,
0: ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ,
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ,
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ,
0: ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ,
1: ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ,
0: ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ,
1: ਆਪ ਉਸ ਕੋ ਕਰ ਕਸ਼ ਨਾ ਜਨਾਵੈ,
0: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ,
1: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ,
0: ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ,
1: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਕਾਮੀ,
0: ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ,
1: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ,
1: ਇਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ,
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ,
1: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਨਾਉ,
0: ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾ,
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ,
0: ਆਦ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ,
1: ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ,
0: ਏਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ,
1: ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਭਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ,
0: ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ,
1: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਪੁਨੀਤ,
0: ਦਰਸ਼ਤ ਚਰਨਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ,
1: ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ,
0: ਪਾਰ ਰਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ,
1: ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੀ,
0: ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੰਪਤ ਜਾਣੈ,
1: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਕਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ,
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ,
1: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ,
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ,
1: ਜੇ ਵਾਏ ਕੋ ਸਤ ਅਨੇਕ,
0: ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ,
1: ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ,
0: ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ,
1: ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ,
0: ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ,
1: ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੇ,
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ,
1: ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ,
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ,
1: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ,
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ,
1: ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼,
0: ਜਾਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ,
1: ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ,
0: ਸੱਚ ਉਪਦੇਸੇ ਵਕੋ ਦੇ,
1: ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ,
0: ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹਰ ਹਰ ਏਕ,
1: ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ,
0: ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਦੁਖਤਾਂ ਤੇ ਨਾਸੇ,
1: ਸਤ ਮਾਹੀ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ,
0: ਅਣਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ,
1: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ,
0: ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ,
1: ਭਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੈ,
0: ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਕਹਿ ਨਸੇ,
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ,
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ,
1: ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ,
0: ਸੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਸਰਵਣ,
1: ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੋਈ,
0: ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ,
1: ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ,
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ,
1: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ,
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ,
1: ਬੋਧ ਬੋਧ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ,
0: ਭਾਇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧਕ ਸੰਗ,
1: ਰਾਜ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ,
0: ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ,
1: ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ,
0: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਹੋ ਧਨ ਸਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप स्वामीत पसारो,
0: शरण कमल विद मैं और तार,
1: कर्म काम सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर बथ,
1: एहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार कुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटै हर अवखत लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निधान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्ताव ते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाउ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: भव बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यो रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मर वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थिर है तना,
0: गल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनिता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातु लेह आने,
0: भक्त बिना भव डूबे सियाने,
1: भक्त की भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: साध ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: साध संग पाव सस्तना,
1: हर पूंजी संच कर हो व्यवहार,
0: हम सुख दर गय जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह,
0: एक समझ एको मन आहे,
1: एक सके गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रभ आप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराद प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल स्यों लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साधक संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जप्या प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच्छपुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: प्रभ रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सो को बिसरे जे किया जाने,
1: सो क्यों बिसरे जे सब कुछ दिया,
0: सो को बिसरे जे जीवन जिया,
1: सो क्यों बिसरे जे अग्न मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सो क्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जनो जनो का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत ए है बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन ध्याया,
1: साजन संत करो ए काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरी है संसार,
0: भगति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों पेख दर सुख होए,
0: मन बिकसै साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दीजै करमया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरुष कारण करतार,
0: जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो हे पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक

0: सच अवर कहां को जाई।
1: सब सिर एक निरंजन राय,
0: एक ही युक्त जा के सब हाथ,
1: अंतर बाहर जन साथ,
0: गुण निधान बेअंत अपार,
1: नानक दास सदा बलहार,
0: पूर्ण पूर रहे दयाल,
1: सब पर हो बत कृपा,
0: अपने कर्तव्य जाने आप,
1: अंतर जामी रहो व्याप,
0: प्रत पालय जी अनुभव भांत,
1: जो जो रचियो सो तिसै ध्यात,
0: जिस भावे तिस लय मिलाए,
1: भगत करै हर के गुण गाए,
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया,
1: कर्म हार नानक एक जाने,
0: जन लागा हर एक नाई,
1: जिसकी आस न वृद्धि जाए,
0: सेवक को सेवा बन आई,
1: हुकम बोझ परम पद पाई,
0: इससे ऊपर नहीं विचार,
1: जाके मन बसया निरंकार,
0: बंधन तोर भय निर्वैर,
1: हर दिन पूजा गुर के पैर,
0: हे लोक सुखी परलोक सुहेले,
1: नानक हर प्रभ आपे मेले,
0: साथ संग मिल करहो आनंद,
1: गुणगावो प्रभ परमानंद,
0: राम नाम तत करहो विचार,
1: दुर्लभ देखा करहो उधार,
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
1: प्राण तरन का यह स्वाव,
0: आठ पैर प्रभ देखो नेरा,
1: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
0: सुन उपदेश हृदय बसावो,
1: मन इच्छे नानक फल पावो,
0: हलत पलत दो लेहो सवार,
1: राम नाम अंतर उरतार,
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
1: जिस मन बसे ते साच परिखिया,
0: मंत्र नाम जपो लिब लाए,
1: दुख दर्द मन ते पाओ जाए,
0: सच व्यापार करो व्यापारी,
1: दरगह निधह खेप तुम्हारी,
0: एक काटेक रखो मन माहे,
1: नानक बहुर न आवे जाहे,
0: जिससे दूर कहाँ को जाए,
1: उबरे राखन हार ते आए,
0: निर्भव जपै सकल भव मिटै,
1: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै,
0: जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख,
1: नाम जपत मन होवत सुख,
0: चिंता जाए मिटै हंकार,
1: जिस जन को कोई न पहुँचन हार,
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा,
1: नानक ताके कार्ज पूरा,
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट,
1: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
0: चरण कमल जाकी अनूप,
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
0: भान सेवा सेवक परवान,
1: अंतर जामी पुरख प्रधान,
0: जिस मन बसै सोहत निहाल,
1: ताके निकट न आवत काल,
0: अमर भई अमरा पद पाया,
1: साध संग नानक हर ध्याया, श्लोक
0: ज्ञान निरंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश,
1: हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास, अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा,
1: नाम प्रभु का लागा मीठा,
0: सकल समिग्री एक घट माहे,
1: अनक रंग नाना दृष्टा है,
0: नौ नदी अमृत प्रभ का नाम,
1: यही मैं इसका विश्राम,
0: सुन समाध अनहद तहनाद,
1: कह न जाइए चरज विस्माद,
0: तिन देखिया जिस आप दिखाए,
1: नानक तिस दर सो जी पाए,
0: सो अंतर सो बाहर अनंत,
1: घट घट प्याप रहा भगवंत,
0: धर्म माहे आकाश पयाल,
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल,
0: अंतिम पर्वत है पार ब्रह्म,
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म,
0: पवन पानी संतर माहे,
1: चार कुंट दा दिसै समाहे,
0: इसके भिन्न नही को ठाऊं,
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ,
0: वेद पुराण सिमरत मैं देख,
1: ससिया सूर न खतरे मैं एक,
0: वाणी प्रभ की सबको बोलै,
1: आप डोल न कब हूं डोलै,
0: सर्व कला कर खेलै खेल,
1: बोल न पाइये गुणे अमोल,
0: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत,
1: धार रहे हो स्वामी ओत पोत,
0: गुर प्रसाद भरम का नाश,
1: नानक तिन मैं एहो विसास,
0: संत जना का देखन सब ब्रह्म,
1: संत जना के हृदय सब धर्म,
0: संत जना सुने शुभ वचन,
1: सर्व व्यापी राम संग रचन,
0: जिन जाता तिसकी एह रह,
1: सत वचन साधु सब कहत,
0: जो जो होए सोई सुख माने,
1: कर्ण करावन हार प्रभ जाने,
0: अंतर बसे बाहर पियो ही,
1: नानक दर्शन देख सब मोही,
0: आप सत किया सब सत,
1: जिस प्रभ ते सगली उत्पत,
0: जिस भावे ता करे विसार,
1: जिस भावे ता एक अंकार,
0: अनक कला लखी न जाए,
1: जिस भावे तिस लय मिलाए,
0: कवन निकट कवन कहिए दूर,
1: आपे आप आप भरपूर,
0: अंतरगत जिस आप जनाए,
1: नानक तिस जन आप बुझाए,
0: सर्व भूते आप वरतारा,
1: सर्व नैन आपे खनहारा,
0: सकल समग्री जाका तना,
1: अपन जस आप ही सना,
0: जाने खेल बनाया,
1: आज्ञाकारी कीनी माया,
0: सब कह मत अलिप्त हो रहे,
1: जो किस कहना सो आपे कहे,
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए,
1: नानक जापा वैता लय समाए,
0: जिससे होई सुना ही बुरा,
1: उरे कहो किने कश करा,
0: आप भला करतूत आत्मी की,
1: आपे जाने अपने जी की,
0: आप साज धारी सब साच,
1: बोत बोते अपन संग राज,
0: ताकी गत मित कही न जाए,
1: दूसर होए ता सोजी पाए,
0: इसका किया सब प्रवान,
1: गुर प्रसाद नानक हो जान,
0: जो जाने ते सदा सुख होए,
1: आप मलाए लय प्रभ सोए,
0: ओ धनवंत कुलवंत पत वंत,
1: जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत,
0: धन धन धन जन आया,
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया,
0: जानिया मन का यह सुआ,
1: जन के संग जित आवे नाम,
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सबान सबना ने सारिया दे सब ने देखे कोखे जमीन जबान सबान के पेख है सारिया नू चंगी तरह कोख्या। हुण इत्थे भी थोड़ी जिवें बेनती करदिया मन च आवेगा भी पाठ पढ़न की गल तां गुरबाणी भी कहिंदी। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जदों पाठ की गल करदे आ उत्थे नाल विचार की गल करदे आ, जिथे विचार की गल करदे आ उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब आचार की गल करदे। पाठ विचार और आचार महाराज ने देखो बाणी च सी, मेरा ख्याल इत्थे कथा कीती सी जी, पढ़ पढ़ गड्डी लदियां इत्थी कीती सी जी महाराज दी आसा की वार च। उत्थे महाराज जी ने सारे ग्रंथां दा जिक्र करके इन्नी पढ़ाई कर लै, पर गल फिर भी उत्थे मैं पढ़ लिया पर नाल खौमे दी तह फिर जम गई, मैं तां एडा वड्डा पाठी आं ते कदी पाठ नहीं कीता। पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाईयां, पढ़ पढ़ गड्डियां खात, पढ़ियां जेते बरस बरस, पढ़ियां जेते मास, पढ़ियां जेती आरजा, पढ़ियां जेते सांस। इस गल नूं गुरु गोबिंद सिंह कह रहे नानक लेख है एक गल सिमरन। जे तू ग्रंथ पढ़ रहे हैं ओदी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, गुरु गोबिंद सिंह कहते सारी धरती दे ग्रंथ तू वेख ले। नानक लेख है एक गल होर खौमे झकना झाख, इहनू गुरु अर्जुन साहिब कहिंदे आ पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਚ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਿਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਵਿਧ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਖਾਂ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ पढ़े का क्या गुण, सुनो इस बेनती नूं पीर साहिब। वेद पढ़े पुराण पढ़े कुरान पढ़े की पर की भला होया। कहन लगे मैं इन्ना कुछ चेते कर लिया। वैसे शब्द किते खुल के अर्थ हुण गुरबाणी दे समझ पै जाए, जेडे आपां भी झगड़िया च पए ना हालत साडी भी होई। कहिंदे इन्ने सारे वेद चेते ने, इहदी खोपड़ी च इन्ना कुछ चेता। कहन लगे तेरे ग्रंथा दा ज्ञान इस तरह जिवें खोते दी पिठ उत्ते किसे ने चंदन ला दिता होवे। सुनो चंदन कीमती है, खोते कोल समर्था है भार चुकण दी, पर उहनू इन्नी बेसमझ नूं समझ कोई नहीं जिहड़ा मेरे पिठ ते वे कीमती किन्ना कु है। कई वारी धर्म दे ग्रंथ दे शब्द कंठ हो जांदे ने गुरमुखो, उहदी कीमत दी सार नहीं नहीं पता हुंदा। वेद पुराण पढ़े क्या का गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाहीं फिर ज्यों बेतालिया। नाम नु तां सुने ने बस तुका कड कड के लड़ना शुरू कर दिता। महाराज भाई साहब ने कहा वेद कते भुलाए कै मोहे लालच दुनी शैताने, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने। उस कॉन्सेप्ट च गल कही गई, वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान का पिक है, हर चीज देखिए। पर महाराज अगे बचन कर रहा पौन आहार, पौन आहवा जी आहार दर्थ आप सारे जाने खुराक भोजन। कई ऐसे ने जेडे सूक्ष्म हो जाते ने रोटी नहीं खाते, वह पौन नू आहार बनाते ने। महाराज कहते मैं ये भी देखे जी पौन आहारी जति जत धार, जेडे जमांदरू बाल जति जिन्होंने यत नू धारण किया उन्होंने ग्रिस्त नू अपनाया ही नहीं। महाराज कहते पौन आहार जति जत धार, सबै सो विचार सबै दर ते सारे। कई ने पाठ कट्ठा किया सो विचार, जे थोड़ा जा वेख लीए चंगे विचार वाले बंदे जेड़े चंगे ख्याल देने वाले सन समाज। महाराज कहते ने पौन आहार हवा नू भखण वाले जत नू धारण करने वाले सब ऐसो विचार, हजारक हजारक हजारा कु एक नहीं हजारा पौन आहारी देखे, हजारा जति देखे, हजारा जेड़े ने अपने आप नू ब्रह्मचारी कहने वाले देखे। सब ऐसो विचार हजार के देखे, हजारा देखे
धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसी ये तीन तुकां च तीन पंक्तियां च ये बख्शिश कीती, पर आखर तीर्थां दा इशनान भी तां कर्म बड़ा कठिन है ना। दया करनी, दम रखना, दमन करना, संयम रखना, करन बड़े औखे ने। सच्चे पातशाह किताबां पढ़नियां, ग्रंथ पढ़ने बड़ी एनर्जी लगती। तुसी यह भी कह दिता पौन हारी, कोई साधना है तां पौन दा हार कीता, बड़ी कमाई होवे तां ही बंदा जीव दे चस्के ते रोटी ते काबू पाए। महाराज जिन्हां ने ग्रिस्त भी नहीं धारण कीता, अपने आप नूं रोक के रखिया। पौन आहार जति जत तार, सवे सो विचार हजार के देख। हजारा महाराज कहिंदे मैं देखे जी सतगुरु, फिर कहना की चाहते हो? महाराज कहिंदे बस इको गल कहनी चाहना, श्री भगवान भजे बिन भूपत। दान कर रहा पर सिमरन नहीं कर रहा, विखावे दा तीर्थ नहा रहा पर अंदर दी मैल नहीं धो रहा। बार मुखी इंद्रिया दा दमन करदा पिया पर फुरने ते काबू कोई नहीं, मनवा काबू च नहीं। महाराज कहने बार मुखी पाठ करदा, पाठ जबान कर दी, मन पता नहीं की पड़ी जांदा। देखो इस गल नूं सुनो गुरु साहब जी की, ये खंडन की गल थोड़ा जी, ये तो महाराज सुमार्ग पांदे पए आ, सही रस्ता दस रहे। सतगुरु कहिंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत। श्री भगवान परमात्मा वाहगुरु जी सब दा श्रोमणी, माया दा भी पति। इत्थे भूपत दा अर्थ दास ने वाहगुरु मालक कीता, क्योंकि इहदे विच राज साज दा जिक्र नहीं, इह तां सारा कर्म कांडियां उहनां दा जिक्र है जिहड़े कठिन तप कर रहे आ। गुरु साहिब कहिंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत, उस मालक वाहगुरु दे सिमरन तो बिना, उहदे भजन तो बिना। महाराज कहिंदे ने एक रती बिन, एक विच रत्ते तो बिना, रत्ती नहीं सिमरन रत्ते जाना। एक रत्ती बिन, एक सिमरन विच रंगण तो बिना, एक ना लेख है, एक ना लेख है। महाराज कहिंदे जेड़े मैं उत्ते गिण के आया कि तीर्थ नान दया दमदान, एक ना लेख है। सो संयम नेम अनेक विशेख है, एक ना लेख है। इस तरह अर्थ होणगे दे, इन्हां विचों एक भी लेखे च नहीं। वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान कपेख है, एक ना लेख है। सिमरन तो बिना एक भी लेखे च नहीं। पौन आहार जते जते जतार, सब ऐसो विचार हजार का देख है पर एक ना लेख है। इस तरह अर्थ सारे सवैये दे होणगे। इन्हां विचों एक सिमरन तो बिना, बंदगी तो बिना, नाम तो बिना, कुछ लेखे च की पएगा तेरे। हजूर सच्चे पातशाह इहदे सारे सवैये दा दाता जी दा निचोड़ इह वे जी, बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे। भगत नामदेव जी, गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द, बनारस विच उल्ट के तप करे ते उत्थे मर भी जाए। बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे, अगन दहे जिउंदा अग भी साड़दा धूनिया च। बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे, अगन दहे काया कल्प की जय। कल्प चिरजीवी रखने लई दवाइयां खानियां, जड़ियां बूटियां जोग मत वालियां। काया कल्प की जय, असमेद जग की जय। आ जे इस सवैये दे अर्थ, ओ जग करे जिहदे विच घोड़ियां दी बली दित्ती जांदी, असमेद जग। असमेद जग की जय, सोना गर्भदान की जय। सोना फरूट विच रख के जिवें पेठा नहीं हुंदा, चीर के विच सोना भर दिता, उत्तों बंद कर दिता किसी नूं पता ना लगे। गुरु ग्रंथ साहिब दुआई देख के कहिंदे ने लोको समझो इस गल नूं, बनारसी तीर तप करै उल्ट तीर्थ मरै, अगन दह काया कल्प की जय, असमेद जा की जय, सोना गर्भ दान दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजै। श्री भगवान भजे बिन भूपत, राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पखंडी मन, कपट ना कीजै, खरका नाम नित नित दीजै। गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदारा नहाइए, गोमती साहस गौ दान कीजै। हजारा गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे, ए भी नदी। महाराज कहिंदे ने आत्म जो नरमाइल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नितो नित कीजै। घोड़िया दा दान कर, गौवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर,
पर सच्चे पातशाह कहिंदे ने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।